0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
6: बचपन हर गम से बेगाना होता है, गीत गाता चल का ये खूबसूरत गाना वाकई बहुत कुछ कहता है ये गाना। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। और सच बात तो ये है कि बचपन, बच्चे, बच्चों के साथ हम खेलना चाहते हैं। और जब हम कोई बड़े व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ना कि इसका बचपना अभी गया नहीं है, कोई नहीं चाहता कि किसी का कोई बचपना चला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान खुश होता है और खुश रखने की कोशिश करता है अपने बचपने के ज़रिए। और जब हम बच्चों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को देख के हमें खुशी मिलती है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और इस आंदोलन की एक शुरुआत जो रही है 1980 में, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं सहना प्रियदर्शनी, जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं दिल्ली ऑफिस से, साथ ही साथ हैं अजीत सिंह रावत जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, आप भी दिल्ली से हैं। तो सहना जी, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
7: जी धन्यवाद।
6: अजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद गगन जी।
6: कैलाश सत्य

0: अर्थी फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा। इनके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर पाया, वैसे हमने बहुत देखा है इनको, सुना है। एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध आप पक्षधर रहे हैं, और ये हमेशा बच्चों के हक की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। तो सबसे पहले सहना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो संस्था है आपकी, किस तरीके से काम करती है?
1: तो ये फाउंडेशन जो है, हम लोग जो है बाल अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा काम करते हैं। बाल अधिकार का सुनिश्चित होना जो है एक कैलाश सत्यार्थी जी का एक विजन रहा है हमेशा, कि अगर दुनिया या फिर आगे का फ्यूचर तभी वो सेफ है जब एक बच्चा जो है वो सेफ होगा, क्योंकि वही जो है आगे यूथ बनेगा और आगे वो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा। तो उसी को लेते हुए कैलाश जी का ये विजन रहा है और उसी को हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी पे काम करता है, जिसको लिए हमारा अलग अलग तरीके के काम है बच्चों के साथ, जिसमें एक है हमारा बाल मित्र ग्राम, जो कि शुरुआत हुई थी सुमेधा जी की तरफ से, जो कि उनकी वाइफ हैं सर की, उन्होंने जो है ये शुरू किया था। हमारा सबसे पहले राजस्थान से ये शुरू किया है, उसी तरीके से अभी हमारे बीच जो है, हम रूरल जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण हो सकता है उस इलाकों में हम लोगों ने काम शुरू किया है वहाँ पे, जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारे अलग अलग जगह पे ये काम है। इसी तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ हम लोगों का काम रहा है, जहाँ पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं एक बच्चे को लेकर, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारा लीगल एड सेशंस हैं, लीगल एड डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ में हमारे विक्टिम असिस्टेंस का डिपार्टमेंट है और साथ में कैंपेन्स का है। तो एक ओवरऑल तरीके से हम एक कम्युनिटी को एक अवेयरनेस के थ्रू जो है और साथ ही साथ में इंटरवेंशन के थ्रू जो है हम काम करते हैं, ताकि हर बच्चा जो है सुरक्षित रहे। और इसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बाल अधिकार के साथ साथ चाइल्ड लीडरशिप की बात है, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है एक बच्चा अगर बचपन से जानने और उसको फॉलो करने लगे तो वो आगे जाके एक अच्छा सिटीज़न भी बन सकता है और वो जागरूक रहेगा। तो हमारे बाल मित्र ग्राम में जो है बाल पंचायत बनते हैं, और इसी तरीके से हमारे बाकी अदर और प्रोग्राम से जहाँ पे बाल पंचायत बनते हैं, बच्चे जहाँ पे खुद नेतृत्व लेते हैं कि वो अपने इश्यूज और अपने जो भी इश्यूज है उसको लेकर आए।
0: कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आपकी संस्था करती है, लोगों के बीच में जाती है, बच्चों के हक की बातें होती हैं, और जिसमें कि आपने यहाँ जिक्र किया कि ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक कैंपेन आप लोग चलाते हैं, कानून की जानकारी भी उनको दी जाती है, बाल पंचायत आप लोग एक बनाकर चलते हैं जिसमें कि बच्चों को ही किसी को लीडर बनाया जाता है और उनके साथ बच्चे ही जुड़े हुए होते हैं। आपने बातों बातों में मुझे बताया कि सहना कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में बच्चों का शोषण हो रहा है, तो क्या कोई आपकी एक टीम है जो रिसर्च करती है कि हमें वहां जाना है, हमें पता चला है कि वहां बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है? अजीत, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि संगठन अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करता है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ ग्रास रूट इंटरवेंशन, और जब हमें ऐसी कोई लीड मिलती है या हम कोई ऐसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां हो सकता है कि बच्चे श्रम में लिप्त हो, तो उसके लिए हमारी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो उसका एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू। तो जितने भी ये इंटरवेंशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस विभाग हो गया, DM हो गया, उनके साथ मिलके रेड एंड रेस्क्यू का भी हम इंटरवेंशंस करते हैं शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन सेटअप में, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
0: जी जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई कि आपकी जो संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये आप हमें बहुत डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही साथ जब मेरी सहना जी से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि बाल मित्र ग्राम की भी शुरुआत, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ और सवाल है, हम इसके बारे में आपसे जानेंगे जरूर, मगर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
4: गाने दीजिए ना, गाओ बेटे,
3: यही गाना गाओ, गाओ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। एक ऐसा नाम जो कि भारत में तो जाना ही जाता है, विश्व पटल पर भी जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि हर घर घर में उनका नाम है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। आप हैं कैलाश सत्यार्थी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी संस्था के बारे में बातें हो रही हैं। और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके इस क्षेत्र से आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सहना प्रियदर्शनी और अजीत सिंह रावत। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है,
1: धन्यवाद।
0: अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो बात करते हैं कि कुछ चैलेंजेस आते होंगे। जाहिर सी बात है कि किसी काम को आप धरातल पर लेकर जा रहे हैं, आसानी से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी दुश्वारियाँ आपके सामने आती हैं, उन दुश्वारियों का किस तरीके से आप लोग सामना करते हैं। सहना प्लीज आप बताएं।
2: जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काम या फिर सोसाइटी में अगर किसी भी बदलाव की बात करें तो एक स्लो प्रोसेस, और साथ ही साथ में उसके अपने ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसी तरीके से बच्चों के साथ शोषण हो गया हो, ये काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और होता आ रहा है। तो उसको चैलेंज जब करते हैं, जैसे कि हम, मैंने इससे पहले बताया था कि हमारा एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू का, जिसमें हम लोग बच्चों को अगर वो चाइल्ड लेबर में लिप्त हो तो उनको हम जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं उन जगहों को, और उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा कर जो है हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे भी, जब भी ये रेड एंड रेस्क्यू हम लोग करने का कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी, वहाँ पे इतनी सारी चैलेंजेस आती है कि वहाँ का लोकल कम्युनिटी, अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि वो हाथ में पत्थर हो गया या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें चोट पहुँचा सके, तो ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है। उस दौरान उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे अदर प्रोग्राम है बाल मित्र ग्राम, जहाँ पे हमारा कोर है कि हम बच्चों को जो है, एक माइका माइनिंग एरिया है झारखंड में, वहाँ पे हम काम करते हैं। बच्चे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे जगह होते हैं जहाँ से माइका निकाला जाता है, बच्चों को उसमें धकेला जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा कि वो धस गया हो माइका माइन और बच्चे की जो है जान वहाँ पे चली गई हो। तो इन सब के अगेंस्ट जो है कम्युनिटी कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती है कि वो हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस दौरान जो है हम रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, रेगुलर रैपो बिल्डिंग और स्टेक होल्डर ग्रुप्स जो है, जो कि वहाँ पे जो कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ के हम इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए या ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, टीचर्स, इन सबको हम साथ में रखते हैं ताकि हम एक होलिस्टिक, एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज कर पाएं जहाँ पे बच्चे को जो है सुरक्षित रख पाए। उसी तरीके से जब हम रेड एंड रेस्क्यू की बात करें तो हमारा लोकल गवर्नेंस जो है, पुलिस हो गई या SDM हो गए, उनको हम हमेशा साथ में रखते हैं।
0: जी, तो साना अभी आपने बात की कि ट्रेनिंग सेशन की आप बात कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब आप बच्चे को लेकर जाते हैं, काउंसलिंग आप लोग करते हैं, तो यहाँ जो काउंसलिंग की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या उसके माता पिता से भी हम लोग बात कर रहे होते हैं?
2: हमारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो, और क्योंकि बच्चे जो हैं उनके भी साथ हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं दोनों तरीके से। हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन जो मैं कह रही थी, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अन्य हमारे जो वर्क से लोग आते हैं, जैसे वो पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गए वर्कर्स, या फिर और ज़्यादा अधिक हमारे जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करती है ताकि वो लोग सशक्त हो पाए या ऐसे सिचुएशन आए तो वो उस चीज़ में हैंडल कर पाए और बच्चों के लिए जो है द बेस्ट चॉइस जो है वो उस तब ले सकते।
0: जी जी, अजीत, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आप बच्चों को ले जाते हैं, कभी कभी बच्चा ये चाहता है कि नहीं, मुझे मेरे घर ही जाना है, मुझे मेरे को काम ही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना नहीं है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कमा कर लेकर आए, क्योंकि वही एक कमाई का जरिया है। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां भी होती हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में मुझे बताएं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल करते हैं।
1: ये बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर आपको दो तरीके से दूंगा। पहला तो ये है कि जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में टेम्परेरी, मतलब जैसे रेस्क्यू किया है और वो बच्चा किसी और राज्य का है, तो टेम्परेरी बेसिस में जो होम्स होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं उनमें रखा जाता है। उस दौरान बच्चे की एक काउंसलिंग सेशन किया जाता है जहाँ उसकी साइकोलॉजिकल, उसको जाना जाता है और उसको भी तैयार किया जाता है कि वो मेन स्ट्रीम हो पाए, अपने घर जाए और शिक्षा मतलब इनरोल हो स्कूल में, अपनी शिक्षा पूरी करे। और इस स्थिति में जब पेरेंट्स से मिला जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, और अगर ये लगता है कि पेरेंट्स उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि बच्चा उस वल्नरेबल सिचुएशन में है कि वो दोबारा चाइल्ड लेबर में जा सकता है, तो उस स्थिति में कुछ लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं जहां बच्चा अप टू 17 एज तक रहता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है और साथ में जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास आमदनी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा में हम 10 कम्युनिटी और 10 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं HCL फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ हम जब बात करते हैं एक ग्रास रूट इंटरवेंशन की, तो ना हम सिर्फ बच्चों को फोकस करके हम अपना इंटरवेंशन करते हैं, बट उनके सराउंडिंग में जितने भी उनका सोशल प्राइमरी सर्कल है जिसमें उनके माता पिता आते हैं, उनके पड़ोसी आते हैं, आपके स्कूल के अध्यापक आते हैं, और साथ ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CWC, JJB, इन सबको हम इंगेज करते हैं। तो एक तरफ तो हम बच्चे को ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं, और साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनसे हम माता पिता को कनेक्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार का अवसर भी मिले, और उन सिक्योरिटी स्कीम के तहत अगर कोई विडो है तो उनको विडो पेंशन मिलना शुरू हो जाए।
0: क्या बात है,
1: तो इसके साथ ही हम सस्टेनेबल इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि बच्चा 18 साल तक अपना एजुकेशन पूरा करे और वो किसी भी तरह के लेबर में इन्वॉल्व ना हो।
0: जिस उद्देश्य के साथ आप लोग चल रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है।
1: धन्यवाद।
0: सो लिस्टनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक खूबसूरत शेर है, खूबसूरत लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। आज ये जो कारवां है वाकई बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा वट वृक्ष हो चुका है ये फाउंडेशन कि जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इनकी शाखाओं पर बैठकर बचपन झूल रहा है, इनकी शाखाओं पर पकड़कर बचपन आगे बढ़ रहा है, यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन का जो एक मुहिम थी वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है धरातल पर। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं और सिर्फ लोग, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, अजीत यहाँ पर और सहना भी जुड़ी हुई हैं, कि लोग कतराते भी हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, सराहना हो रही है, गवर्नमेंट आपको अवार्ड से सम्मानित कर रही है, आपके ऊपर फिल्में बन रही हैं। मैं फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक झलकी फिल्म मैंने आप लोगों की देखी थी जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन पर आधारित थी कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं और जहां बाल मजदूरी हो रही है वहां से

0: बच्चों का रेस्क्यू करना, उनको लोगों की धमकी भी मिलना, चोटें भी आई हैं, तो वाकई मैं आपके काम को सराहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और जाते जाते बस मैं ये थोड़ा यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, कोई वॉलंटियर ही आपको अपनी सेवा देना चाहे, तो सहना आप मुझे बताएं किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं।
1: जी, जैसे कि अभी तक जो मैंने कहा कि हमारा मुहिम जो है या फिर हमारा ये पूरी कोशिश जो है, ये हम अकेले नहीं हैं। हम, जैसे आपने भी कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरीके के काम हैं जिसको हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ साथ में जुड़ के हमारे जो बाल मित्र ग्राम हो गया, या फिर हमारा जो काम अभी नोएडा में है हमारा, या फिर हमारे दिल्ली क्षेत्र में जो काम है, उन सब में वो आके अपनी तरफ से अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को जो है सशक्त कर सकते हैं उनके राइट्स के ऊपर। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जिसमें वो आके ज़रूर कर सकते हैं उसमें।
0: जी अजीत, आप मुझे बताएं कि अगर सपोज करिए कि बच्चे जुड़ गए, सहना ने जो बात हमें बताई, मैं उससे थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ, किसी का इंटरेस्ट जाग गया कि मुझे समाज सेवा करनी ही करनी है, और जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली है, मुझे भी रुपयों पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुपये पैसों से ही आखिर में घर चलता है, तो करियर की मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ की बात आपसे जानना चाहता हूँ।
2: आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं दो आयामों से दूंगा। एक है कि अगर किसी को लगता है कि किसी बच्चे को वो देखता है और वो चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे कर पाऊँ, तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक 1098 हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड लाइन का। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही संगठन का बचपन बचाओ आंदोलन का हेल्पलाइन नंबर है 1800102722। आप इन दो हेल्पलाइन का मदद ले सकते हैं, और अगर आपको कोई बच्चा किसी विषम परिस्थिति में या अकेले आपको दिखता है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आपका एक कॉल भी उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।
0: बहुत खूब।
2: और साथ ही अगर आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई बच्चा है और वो चाहता है कि किसी कॉज से जुड़े और कुछ सीखने को उसे मिले और भविष्य में उसके कुछ आयाम खुले, तो आप एज वॉलेंटियर कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश सत्यार्थी जी और संगठन की अप्रोच रही है और सोच रही है कि कैसे पूरे विश्व को और समाज को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, बच्चे को कम स्तर ना देखा जाए, उसके साथ एक दोस्ताना हम व्यवहार रखें, उसकी बातें भी सुने और ना कि उसमें हर चीज थोपे। तो उसके लिए हमारे पूरे संगठन का एक झुकाव रहा है यूथ में, तो अधिक से अधिक यूथ एज ए वॉलेंटियर, एज ए इंटर्न, और अगर उनका शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो वो हमारे विभिन्न विभागों के साथ जुड़ सकता है। तो उसका एक प्रोसेस है, आप हमारी वेबसाइट के करियर वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही एज अ वॉलंटियर आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप दोनों ने अपने करियर की यहाँ शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि आप एक समाज सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के घर में एक उजाला ला रहे हैं, किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से आप लोग मिला रहे हैं, उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, एक हेल्दी वातावरण आप लोग दे रहे हैं। तो आप दोनों को, आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, मेरे साथ जुड़ी रहीं सहना प्रियदर्शनी, आप थे अजीत सिंह रावत जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, और जो कि कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को हम प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उसको परेशान कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ में कटोरा होता है जबकि उसके हाथ में कागज कलम होनी चाहिए थी, वो पढ़ता लिखता आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब ये संस्था इसी तरीके की संस्थाएं काम कर रही होती हैं तो निश्चित तौर पर एक खुशी मिलती है, एक अच्छा वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Chill out, so drop it low, man.

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य

0: पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
0: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर
0: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: चोरी चोरी देखे जाए पिया, गोरिया नृत्य करे थुमकिया थुमकिया थुमकिया।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.
9: Yeah. Gagan Kokri. Fateh. Heartbeat.

0: मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू थ्रू शारदा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले है, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन विषयों पर बात करना बेहद जरूरी है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हमारे सीधे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, सेहत सही और लाभ कही। आज की जो श्रृंखला है उसमें हम एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ऐसे ज़रूरी मुद्दे को उठाने वाले हैं जो किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन भी बदलता है, यानी मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज, सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे सेहतिया भैया से। तो सेहतिया भैया, आज आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को अवेयर करें और जो कि हमारा विषय है किशोरों के यौन स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर प्रकाश डालें।
1: भाई, सबसे पहले दीपाली जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ मेरे सभी श्रोताओं को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से प्रणाम नमस्कार। जिस तरीके से आप मुझे सेहतिया सिंह कहती हैं, सेहतिया भैया कहती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं जानकारी का जो खजाना है, जो पिटारा है, उसमें बहुत सारी जानकारियां जुटा कर लेकर आऊं। क्योंकि जो ये करेक्टर है सेहतिया सिंह, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जानकारियां इनके पास सटीक होती हैं, तथ्य पर आधारित होती हैं। तो इस श्रृंखला को, या यूं कहें कि इस एपिसोड को, जो कि बहुत ही खास विषय है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में SRH। तो बात आगे बढ़ती है तो बात निकल कर ये सामने आती है कि जैसे किसी बगीचा में सही समय पर पानी और खाद न मिले तो दोस्तों पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। और यही फर्ज बनता है कि जिस तरीके से दीपाली जी ने कहा कार्यक्रम के आरंभ में, माता पिता, स्कूल के अध्यापक और अच्छे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे का जो मानसिक विकास है सही दिशा में होगा। अगर वो इस उम्र के पड़ाव पर गलत संगत में चला गया तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान, उसके परिवार का नुकसान और कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि एक देश का भी नुकसान हम कर रहे हैं। इसीलिए सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के साथ मिलकर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में आज हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि SRH के विषय में बात कर रहे हैं। और इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना दीपाली जी बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने भैया। वैसे मेरा आपसे सवाल है कि किशोरावस्था के दौरान हमारे शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
1: भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि वाकई आपने बहुत अच्छा सही सवाल किया है। तो जो आधार है जानकारियों का, एक रिसर्च के जरिए मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूं। बात निकल कर ये सामने आती है दोस्तों कि जब बच्चा 10-11 साल का होता है, ध्यान दीजिएगा, 10-11 साल का होता है, तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स

0: शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें आती हैं। जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि हम स्मार्ट के साथ मिलकर चला रहे हैं, हमारे श्रोताओं और समुदाय के लोगों को आप बताएं क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में करते हैं, वो हमें बताएं।
0: बिल्कुल, देखिए दोस्तों, सही जानकारी होना बहुत अच्छी बात है और सही जानकारी को अपने दिमाग में बैठाएं, यानी कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ खास बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई परेशानी होगी नहीं। कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना दोस्तों बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक रिसर्च कह रही है, इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है, तो इस बात को जानना समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। इसलिए बचाव के तरीके जैसे कि गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम खास बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए दोस्तों। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है। ये समझना ही असली समझदारी है दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अपने शरीर को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन भैया, अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या उसके मन में कोई सवाल उठे, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
0: भाई, सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए कि जो संकोच करते हैं वो संकोच में ही रह जाते हैं। जो जानकारी समझना चाहते हैं, सवाल करते हैं, उनको आंसर भी मिलते हैं, लेकिन वो तौर तरीका आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, जिसको मालूमात है उससे आप जान सकते हैं। गूगल पर भी दीपाली जी आजकल जानकारी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध कर यकीन मत करिएगा, आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसी के आधार पर आप डॉक्टर से सलाह जरूर करेगा। साथ ही साथ अपने घर में माता पिता, हाँ भाई, माता पिता से बढ़कर अच्छा दोस्त को हो नहीं सकता, उनसे आप जरूर सलाह लीजिए। स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर आपको भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए। दीपाली जी, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्त साकिब का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। कुछ ऐसी समस्या उनके सामने आई, चूंकि हमारे सामने उनकी एक महिला मित्र थी, उन्होंने उस संबंध में हमसे जाना पूछा। हम वहां हंस भी सकते थे, लेकिन चूंकि हम डॉक्टर से इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, मैंने उनको कहा थोड़ा आप मुझे समय दीजिए, हम डॉक्टर से बात करके उस समस्या का समाधान आपको बताएंगे और वो जानकारी आप अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपके सवाल पर हंसे, गुस्सा करे या आपका मजाक उड़ाए, ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आपका हितैषी कौन है। आपके सवाल का जवाब वो दे पाएगा या सिर्फ आपका मजाक उड़ाएगा, ये आपको समझ होना बहुत जरूरी है।
1: जी सेहतिया भैया, यानी संकोच नहीं रखना चाहिए। अगर आपके अंदर संकोच है तो उसे निकालकर हमें बातें करनी चाहिए। जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच, परंपराएं रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा से रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी, सही सुविधा बेहद जरूरी है। तो सेहतिया भैया, सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि ऐसी स्थिति में संकोच को छोड़कर सही जानकारी और सही सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है।
0: भाई दीपाली जी, बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं और अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात है कि इस खूबसूरत सवाल का जवाब भी बड़ा ही खूबसूरत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चाहे गांव हो दोस्तों या हो शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है। दीपाली जी, आगे बढ़ने से पहले इस बात पर मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरी माँ मुझे इन बातों को समझाया करती थी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो एक दोस्त के नाते, एक माता पिता होने के नाते, चूंकि वो मेरी माँ थी, तो मैं उस समस्या का समाधान उनसे ढूंढने समझने की कोशिश करता था। और फिर जाहिर सी बात है कि डॉक्टर से भी आप सलाह ले ही सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात हम कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता को दोस्त बनाइए, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं।
1: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, जरा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जरूर जरूर, बिल्कुल, ये चिंता की बात है दोस्तों। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो मां बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कम उम्र में अगर वो गर्भवती हो जाए तो मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है दोस्तों।
1: बिल्कुल, सपने छूट जाते हैं, पढ़ाई करियर छूट जाता है। सेहतिया भैया, अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करा लेती है। ये सच में बेहद खतरनाक है।
0: जी, जी।
1: लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये कितना खतरनाक है।
0: बात आप अच्छी कर रही है, यानी कि जो एक रिसर्च है वो हमारे सामने है और ऐसा होता है। जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहां तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है दोस्तों।
1: सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालातों से वो बच सकती है। ठीक है भैया, अब हम एक दूसरी समस्या पर आते हैं क्योंकि हम अपने श्रोताओं को सभी जानकारी देना चाहते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। स्मार्ट के साथ मिलकर हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। तो भैया, हमारी दूसरी समस्या ये है कि आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है।
0: सही बात है कि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं ये बात रिपीट कर देता हूं, HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: बिल्कुल, किशोरों को सही जानकारी सटीक जानकारी और खुलकर जानकारी देना बेहद जरूरी है। भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य को लेकर तो खूब बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता, तनाव की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सेहतिया भैया, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी दिक्कतें युवाओं में क्यों बढ़ रही हैं?
0: भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है दीपाली जी। और ये चिंता, तनाव, डिप्रेशन कोई भी हो और किसी के साथ अगर जुड़ा है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे वो गाना है ना कि हानिकारक है बापू, ऐसी बंधु ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अब आप खुद फैसला करिए कि क्या सही है क्या गलत है। खैर, जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा, यानी कि वो घुटन महसूस करेगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है दोस्तों।
1: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, रिश्तों की समझ और सही और गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है भैया जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किशोर अपने फैसले कैसे समझदारी से ले सकते हैं?
0: वाकई बहुत अच्छे सवाल आप जुटाकर लेकर आई हैं। एक अनुभव के आधार पर, बहुत बड़ा अनुभव है आपका दीपाली जी। और जाहिर सी बात है कि जब एक ताना बाना बुना जाता है तो कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो चलिए आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बच्चों को यह समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभा पाएंगे।
1: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, इससे भटकाव की स्थिति खत्म होती है। लेकिन क्या गर्भ से बच्चे के उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी नहीं देनी चाहिए?
0: भाई एकदम देनी चाहिए। जब किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: बात तो सही है भैया आपकी, और आपने सारी सटीक जानकारी दी है जो कि हमारे युवाओं को पता होनी चाहिए। लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया या उनको जानकारी दी तो वो कहीं गलत रास्ते पर ना चल उठे।
0: देखिए ये बात आती है दीपाली जी हमारे सामने। अब सपोज करिए कि हम किसी को जानकारी नहीं दे रहे लेकिन उसके पास जानकारी का अभाव है, तो वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम किसी को जानकारी दे रहे हैं और वो व्यक्ति समझदार निकल गया तो निश्चित तौर पर वो अपना बचाव कर सकता है, और मैं समझता हूँ एक व्यक्ति 10 लोगों को भी सही रास्ता दिखा सकता है। अब समाज में ऐसी तमाम चीज़ें आप देखेंगे जिनकी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग उल्टे सीधे रास्ते पर होते हैं जिसका खामियाजा उनको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। लेकिन हम कहेंगे कि जानकारी ही बचाव है, जो कि अक्सर ये लाइनें हम सुनते भी हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर्स की बातें हम जन जन तक सेहत सही लाभ कई के माध्यम से पहुंचा रहे होते हैं। भारत सरकार जो हमें विज्ञापन देती है उसमें भी इसी प्रकार की कुछ जानकारी होती है, वो भी हम श्रोताओं तक पहुंचा रहे होते हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। सबसे बड़ा भ्रम है कि जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, है ना? तो आप जानकारी साझा कर सकते हैं, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना है जानकारी का मतलब मकसद। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे कह भी रहा था। लेकिन अगर स्कूल या घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर स्कूल, माता पिता या हेल्थ सेंटर की ओर से किशोरों से खुले मन से बात की जाए तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। सेहत या भैया, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कोई पहल की गई है?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: ये तो बहुत अहम जानकारी आपने श्रोताओं को दी। किशोरों के पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
0: देखिए दीपाली जी, RKSK जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। बहुत ही काम की चीज है दोस्तों। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई किस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बात कर सकें।
1: अच्छा भैया, ऐसा है क्या?
0: अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है दोस्तों। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए नहीं है, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: बिल्कुल, सभी की मदद हो बिना भेदभाव के। भैया, आपने जो RKSK के बारे में बताया वो बेहद जरूरी जानकारी थी। जैसे जब ये प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाए तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे, क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल जाएगी।
0: देखिए, एक और बढ़िया योजना है अर्श, ARSH। इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत बड़ी योजना है भैया, ARSH यानी अश, और हमारे श्रोताओं को सेहतिया भैया के माध्यम से कितनी गहन और कितनी जरूरी जानकारी दी जा रही है। तो भैया ये योजना तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है, अव्वल आती है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थीं।

0: शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल, ये जो भूमिका है ANM दीदी की, जिन्होंने लड़कियों से बेहद प्यार से बात की और बोला कि पीरियड आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का सामान्य हिस्सा है, यही जागरूकता की ओर कदम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम अपने श्रोताओं, समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करी जानी चाहिए। इसमें डर शर्म करके अपना या दूसरों का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, चक्कर आते रहते। फिर वो आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी दोस्तों, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: हाँ, समय पर इलाज मिलने से गीता स्वस्थ हो गई और ANM की भूमिका भी काफी सार्थक रही। भैया, तो इसका मतलब हम मान लें कि ये सभी योजनाएं सच में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और इनका असर भी हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है दोस्तों और आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल। तो भैया, ये बात तो साफ जाहिर है कि सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया, आपने बहुत जरूरी और गहन जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करी। तो हम मान लें भैया कि अगर ये ठान लें कि किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, उन्हें सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब उनके पास सही जानकारी होगी तभी उनकी सोच खुली हुई होगी, तभी सेहत अच्छी रहेगी और समाज तरक्की करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम किशोरों के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एनीमिया से जुड़े हुए सभी मुद्दों को समझें और उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्हें खुलकर जानकारी दें। इसमें परिवार से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी की अलग अलग भूमिका है, सभी अपनी भूमिकाओं को समझें और किशोरों का साथ दें। तो भैया, अब हम लेते हैं इजाजत। मैं अपने श्रोताओं से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। घर जाने से पहले हम लेंगे एक शपथ।
0: जी, पहली लाइन आप लेंगे, दूसरी लाइन मैं लूंगा।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: दोस्तों, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
3: सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी SRH के संबंध में अभी आपने विशेष चर्चा सुनी। इसी संबंध में समुदाय से अनुपमा गर्ग हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रखती हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं।
4: देखिए, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और उनके घर वालों के लिए इन बातों पे बात करना जरूरी है, इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि जब आप इसके बारे में सूचना कहीं से लें या कहीं दें, किसी को दें, तो वो सूचना सही है कि नहीं ये पता हो, वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं ये पता हो। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, पोर्न फिल्म देखा, उसके बारे में, उससे सेक्स के बारे में सीख लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि पोर्न फिल्म तो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड है, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सही होने बहुत जरूरी है। आमतौर पर एक डॉक्टर, एक टीचर, एक पेरेंट, काउंसलर, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कोई है, आसपास कहीं अगर कोई NGO है जहां आप किसी से बात कर सकते हैं, यहां से आपको सही सूचना, सही संवाद मिलने की संभावना ज्यादा है। यहां चांसेस ज्यादा है कि आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। दूसरी चीज, कोई गलती, कई बार बच्चों से कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटीज हो जाते हैं और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, लेकिन वो शर्म और झिझक के मारे बता नहीं पाते और बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ज्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो भी किसी बड़े से, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करें ताकि उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो निकाले जा सके।
3: अभी आपने सुना सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी SRH के संबंध में हमारे साथ जुड़ी रही अनुपमा गर्ग। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं, भटकिए मत, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए और दोस्तों से जरूर बात करिए, वो दोस्त जो आपको सही सलाह दे सके। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी टीचर से बात करिए, और यही शिक्षा स्कूल कॉलेजेस में आज दी जाती है। जैसे कि छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो समझाया जाता है कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपने मालूमात, जानकारी हासिल की होगी। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसर्स 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हे
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, खेती तो आप करते ही हैं और बड़ी लगन के साथ करते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। आप देख भी रहे होंगे, अगर हम बात जलवायु परिवर्तन की करें तो उसका भी सामना आप कर ही रहे होंगे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है तकनीकी जानकारी की, उन्नतशील बीजों की, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो आपको सलाह देते हैं उनके अनुसार खेती करने की, और इसके साथ ही हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए हमें खेती के साथ साथ अन्य काम भी हैं वो करना भी ज़रूरी है। बहुत से किसान भाई सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं खेती आपको घाटा देगी, आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती है, क्योंकि जब खेती में घाटा हो जाता है तो उसकी भरपाई फिर आप कहीं से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं या कोई और उद्योग करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, तो उसकी भरपाई आपकी हो जाती है और आप आर्थिक संकट से बच जाते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि खेती तो आप करिए करिए, साथ ही साथ कोई ना कोई आप स्वरोजगार करिए, पशुपालन करिए, और भी बहुत से काम हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, आपका मछली पालन है, और आजकल तो हमारे किसान भाई जो जैविक खेती की हमारी सरकार सिफारिश कर रही है उसके लिए जैविक खाद का प्लांट भी लगा रहे हैं, तो खुद की खेती के लिए भी खाद काम आता है और आप उसको बेच भी सकते हैं, तो इस तरह से भी आप फायदा ले सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आपको तकनीकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका लाभ भी आप नहीं उठा सकते। जैसे आपको याद दिला दें कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, जिसको आप MSP के नाम से जानते हैं। तो ये भी योजना इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आपके सामने आर्थिक संकट ना आए, आपकी जो खेती में लाग लगी है वो निकले, साथ ही साथ आपको फायदा हो। तो ये जो MSP है हमारे किसान भाइयों के लिए सालों से चल रही है। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है तब भी सरकार फसलों को MSP पर ही हमारे किसान भाइयों से खरीदती है ताकि हमारे किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP शुरू की थी ताकि सरकार हमारे किसान भाइयों से गेहूं खरीद कर गरीबों को बांट सके। किसान मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल के लिए तय किया गया न्यूनतम मूल्य है। ये किसान भाइयों को उनकी फसल को बाजार में कम दाम पर बेचने से बचाता है, या यूं कह सकते हैं, आपको मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि किसी फसल का MSP 20 रुपये प्रति किलो है और बाजार में वो 15 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, तब भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपये प्रति किलो में ही खरीदेगी। तो आपको अब MSP का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। और भी MSP के क्या क्या फायदे होंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम खेत खलियान का एक हिस्सा ये भी होता है कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में पता चलता रहे, और खेती में जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, जो नए नए बीज आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होता रहे। तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं तरुण बालियान।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण वालियान से ये उपदेश, और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में MSP की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि MSP होती क्या है और हमारे किसानों के लिए क्यों ये फायदेमंद है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि वित्तीय उतार चढ़ाव से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए ये एक मूल्यवान उपकरण की तरह काम करता है। क्या? MSP। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP हमारे किसान भाइयों को बाजार और प्राकृतिक आपदा जैसी अनिश्चितताओं से बचाने के लिए काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए। और किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि हम वर्तमान समय की बात करें तो 23 फसलें हैं जिन्हें MSP मिलता है, यानी कि MSP पर सरकार खरीदती है। इन फसलों में है बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार के साथ साथ अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर जैसी दालें और कुसुम, सरसों, नाइजर बीज, सोयाबीन, मूंगफली जैसी तिलहन शामिल हैं। साथ ही तिल और सूरजमुखी, इनके अलावा कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिलता है। वैसे तो हमारे बहुत से किसान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, लेकिन जो किसान भाई अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइएगा और जो भी वहां अधिकारी हैं उनसे आप मिलिएगा और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप MSP पर अपनी फसल बेच सकते हैं और आर्थिक संकट से उभर सकते हैं। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं एक रागनी, जैसा कि आप चाह रहे होंगे कि भाई जानकारी के साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिलता रहे, हमें रागनी, उपदेश, लोकगीत भी सुनने को मिलते रहे। तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक रागनी आपको सुनवाते हैं और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना। और किसान मित्रों, किस्सा रहेगा राजा हरिश्चंद्र का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना से ये रागनी, किस्सा था राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य हमारा यही है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, और ये खुशहाली तभी आएगी जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आप आज के समय के अनुसार अपनी खेती कीजिए, और जो सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजना चला रही है उनका आप लाभ लीजिए। साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं आपको समय समय पर तकनीकी जानकारी देते हैं कि आज के समय के अनुसार हमें बीज का चुनाव कैसे करना चाहिए, अपनी मृदा की जांच क्यों कराना जरूरी है, जैविक खाद का उपयोग करना क्यों जरूरी है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और साथ ही साथ उनको उपयोग में भी लाना है। किसान मित्रों, एक और समस्या हमारे घरों में देखी जाती है कि जो बेटियां हैं बड़ी होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ता है कि धन की व्यवस्था कैसे की जाए। बेटी को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, तो धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़े चिंतित हो जाते हैं अपनी बेटियों को लेकर के। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी बेटियों के लिए चला रही है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई ये एक छोटी बचत योजना है। तो किसान मित्रों, ये बहुत ही अच्छी योजना है छोटी बच्चियों के लिए, और बात करते हैं अब इसकी पात्रता की। तो जो बच्चियां 10 साल से कम उम्र की हैं उनके नाम पर खाता खोला जा सकता है, और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए आप जमा कर सकते हैं, और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए जमा

किए जा सकते हैं। और जो पैसा आप जमा करते हैं इस खाते में, उस पर हर साल 8.2% का ब्याज मिलता है। और आपको बता दें कि खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और ये खाता 21 साल में परिपक्व हो जाता है। और बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जो आपने पैसा जमा किया है उसमें से 50% तक आप निकाल सकते हैं। किसान मित्रों, यहाँ पर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खोले जा सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी डाकघर है या जो भी अधिकृत बैंक है वहां जाकर के आप अपनी बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है ये बच्चियों के लिए, इसका लाभ आप जरूर लें। अभी तक आपने अपनी बच्चियों का खाता नहीं खुलवाया है और जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो जरूर इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाएं ताकि आपको भविष्य में अपनी बेटी की शादी की चिंता ना हो या उनको कोई उच्च शिक्षा दिलवानी है उसकी भी चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि तब तक बेटी के खाते में धन की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो आप शादी भी अच्छे से कर पाएंगे और उनको पढ़ा भी अच्छे से पाएंगे। तो इन सब बातों का जरूर आप ध्यान रखें। और देखिए, अब चलते चलते आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, प्रियंका चौधरी द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मेहरवानों, सत्यवादी हरिश्चंद्र को कालिया भंगी ने खरीद लिया 30 भार सोने में, और उधार तारावती और रोहतास को रामलाल पंडित जी ने खरीद लिया 30 भार सोने में। मेहरवानों, आज 60 भार सोना विश्वामित्र का जो कर्ज के रूप में था पटा दिया। उस मौके का जिक्र कि जब हरिश्चंद्र कालिया भंगी ने भेजा नदी पर जल भरने के लिए, और उधार तारावती रामलाल पंडित जी ने जल भरने के लिए भेजी थी। दोस्तों, आज महारानी तारावती और सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र का भंगी के रूप में और तारा का ब्राह्मणी के रूप में मिलन होता है, तो कैसे 30 दिन का भूखा हरिश्चंद्र आज अपनी पतिव्रता ब्याहता से घड़ा उठाने के लिए कह रहा है।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद

आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

आज उस कमर में बैरी बिशियर चूट गया। मेहरबानो तारा रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपता पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hello, मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओ, मुझे बुखार हो गया है। पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओह नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है, ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम

0: दरवाजा खोल। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो? अरे कहां मरी है? दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोल सकती हा? मुझे 10 मिनट हो गए हैं बाहर खड़े हुए। क्या कर रही थी तब से? पता नहीं क्या क्या करती रहती है अंदर बैठकर। हटो यहां से। अरे अब कुछ खाने को भी देगी कि मुंह ही ताकती रहेगी मेरा? तुझे तेरी माँ ने सिखाया नहीं है बाहर से आए इंसान को रोटी पानी देना होता है? पता नहीं कहां से मेरे नसीब में लिखी हुई है मनहूस जैसी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ भाई कैसे हो?
1: बस ठीक हूँ यार, तू बता।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक चल रहा है सब।
1: बढ़िया बढ़िया, तू सुना भाभी कैसी है?
0: अरे यार नाम किसका ले दिया तूने, उसका क्या होगा? ठीक है वो भी, बस मेरी जिंदगी उसने नरक बना के रखी हुई है, मनहूस जैसी औरत।
1: भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया?
0: ओ कुछ नहीं यार, जब से शादी हुई है ना मेरी जिंदगी तो नरक ही बन गई है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी टोटल ही बर्बाद हो गई है, मैंने तो जैसे आफत ही गले लगा ली हो। इतनी मनहूस है ना भाई, क्या बताऊं? जब से मेरी जिंदगी में आई है हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कभी चैन से नहीं रह पाया हूं मैं जब से उसे शादी की है। और भाई इसका बाप कहता है कि हमारी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बड़ी ज्यादा संस्कारी है। अरे मुंह माय संस्कारी है, है? क्या सुंदर का क्या करूं मैं, किसी काम के जोगे नहीं है भाई, कोई काम नहीं करी राजी। और सुनो मेरी बात भाई आप।
1: जी भाई। और
0: भाई बाप ने उसके मुझे गाड़ी तक तो दी नहीं, एक टूटी फूटी सी बाइक दे दी है, है? मैंने सोचा था कि गाड़ी होगी मेरी भी टोर होगी, है मैं भी टोर से आया जाया करूंगा, टूटी सी बाइक उसके बाप ने मेरे मथे मर दी है। ओ अरे क्या तोड़ दिया बिने, रुक मैं बाद में कॉल करता हूँ, पता नहीं इस मनहूस ने अब क्या तोड़ दिया मेरा। करता हूँ बिने, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है बाय बाय बाय। तेरे बाप ने दिया था ये? हाथ टूटे हैं तेरे जो ढंग से तुझसे उठाया नहीं जाता, जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अरे यार बड़ी अजीबोगरीब औरत है तू। हाँ
2: मैं उठाती हूँ, अभी उठाती हूँ।
0: अरे जुबान मत खोल मेरे सामने, समझी? ना अकल है तुझमें, ना ही तू सुंदर है। और सुन अगर ज्यादा बोली ना तो तेरी सांस तक बंद कर दूंगा, दिमाग खराब करके रखती है सुबह शाम बस मेरा।

0: हेलो
1: माँ, माँ मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप प्लीज प्लीज पापा को कहकर मुझे यहाँ से ले जाओ ना, प्लीज प्लीज माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत पीटते हैं ये, मैं नहीं रह सकती माँ, प्लीज प्लीज आप पापा को बोलिए कि मुझे यहाँ से ले जाए, प्लीज।
2: चुगली कर रही थी मेरी, हाँ मेरी चुगली कर रही थी। रुक मैं बताता हूँ चुगली कैसे होती है, देख अब देख तू कौन बचाता है तुझे, आज कौन बचाता है तुझे, इधर आ तू, इधर आ, हैं इधर इधर बकवास करती है मेरे आगे, हैं इधर ही रखूंगा तुझे मैं और ऐसे ही पीटूंगा तुझे मैं, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, हैं कौन बचाता है तुझे, बकवास करती है मेरे आगे, हैं।
1: भगवान मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये इंसान मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। हे भगवान कैसा पति दिया है मुझे, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो।

नमस्कार श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीना। तो श्रोताओ, अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा से परेशान है तो वो कॉल करें 7018117091 पर। रेडियो गुंजन अपना फैमिली काउंसलिंग सेंटर चला रहा है जहाँ महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। श्रोताओ, हिंसा एक कानूनी अपराध है, आपको आगे आकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर आपके साथ कोई हिंसा हो रही है तो आप भी कॉल कर सकते हैं रेडियो गुंजन के हेल्पलाइन नंबर पर, नंबर रहेगा 7018117091।

0: माया, ओ माया, माया दरवाजा खोल, देख कोई आया है बाहर।
1: हाँ जी, मैं अभी देखती हूँ।
2: मैडम, आपका नाम माया है?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही माया हूँ।
2: आपने कंप्लेंट की थी?
1: जी, मैंने ही कंप्लेंट की है।
0: ओ, कौन है? बताती क्यों नहीं, कब से खड़ी है दरवाजे के पास? कौन है, कौन आया, बता जल्दी।
2: हाँ जी, तो यही है आपके पति?
1: जी इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, बताओ, मैं ही हूँ इसका पति, क्या हुआ बताओ।
2: तुम्हारे खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने रेडियो गुंजन के थ्रू कंप्लेंट की है।
0: मेरे खिलाफ? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा तो बहुत प्यार है आपस में। बोलो माया, बोलो ना माया, हमारा तो इतना प्यार है इंस्पेक्टर साहब कि क्या बताएं आपको, हम तो एक दूसरे के बिना रोटी नहीं खाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ ही रहे
2: बस,
0: हो ना?
2: बस, मुझे लग ही रहा इनका चेहरा देखकर।
1: इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती।
0: अरे तुम,
2: अरे तू चुप कर,
0: अरे तुम
2: तेरे को बोला तू चुप कर। मुझे पहले लग गया था पता इनका चेहरा देखकर कि कितना प्यार करता तू। माया, घबराओ मत, तुम बताओ मुझे सच सच, क्या माजरा है?
1: इंस्पेक्टर साहब, ये रोज रोज आते हैं और मुझे पीटते हैं, छोटी छोटी बात को लेके हाथ उठाते हैं। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, अगर मैं और इनके साथ रहूंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे पे भी इसका असर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए।
2: चलिए आप, चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए आप पुलिस स्टेशन मेरे साथ चलिए, चल चल चल चल।
0: सर, हमारा आपसी मसला है, आप रहने दीजिए ना।
2: ये क्या आपसी मसला है? नहीं, हमारा आपसी मसला नहीं है, चुपचाप चल पड़, घसीटता हुआ लेके जाऊंगा नहीं तो यहाँ से।
0: माया माया माया, बोलो ना इन्हें, कुछ तो बोलो माया, कुछ तो बोलो माया, माया माया।
2: सब बस माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर हर महिला तुम्हारी जैसे हिम्मत से काम करने लगे तो ये घरेलू हिंसा खत्म हो जाएगी। सब बस माया, सब बस।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: लाल ओ छोरा गंगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक यह दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेस

फ्रीजिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का खूब प्यार भरा नमस्कार और इसके साथ खूब सारा प्यार, लाड़ और दुलार। आप सब मेरा प्यार, लाड़ और दुलार इकट्ठा तो कर रहे हैं ना? तो अब तक तो खूब जमा हो चुका होगा, थोड़ा मुझे भी दे दीजिएगा। थोड़ा ही क्यों, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आपका प्यार, आपका लाड़, आपका दुलार और आपकी गलवैयां मुझ तक पहुंच जाती हैं। मन की बात है, मन की बात मन से निकलकर दूसरे के मन तक पहुंच जाती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कविता लेकर आई हूं, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात है। उसका शीर्षक पता है क्या है? उसका शीर्षक है मन करता है। आप सब बच्चों का मन अलग अलग तरह के काम करने को करता होगा। मेरा भी मन अलग अलग तरह के काम करने को करता है। तो कोई जरूरी नहीं जिस काम को करने का मन मेरा करता है वही आप भी करना चाहें, और जो आप करना चाहें वह मैं करना चाहूं। लेकिन बच्चों, आपकी हमारी जोड़ी ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो काम ऐसे जरूर होंगे जो आप भी करना चाहते हैं और जो मैं भी करना चाहती हूँ। हम दो चार काम भले ही ना गिना सकें, लेकिन एक काम है जिसे करने के लिए आपका भी मन करता है और मेरा मन भी करता है। वह काम क्या है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह काम है इस चैनल के जरिए गपियाना और ढेर सारी बातें करना। तो क्या हम कविता शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए हम एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कैसी लगी आपको कविता? मुझे तो बहुत मजा आया। मजा इसलिए भी आया क्योंकि यह एक बच्चे की ख्वाहिश है, एक बच्चे की कल्पना है, एक बच्चे का मन है। उसका मन बहुत कुछ बनकर बहुत कुछ करने को करता है। अब आप सोचिए कि आपका मन क्या करता है। मैं अपने से शुरू करती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा। मेरा मन करता है कि मैं मछली बन जाऊं। आप पूछेंगे, उषा दीदी आप मछली बनकर क्या करेंगी? तो मेरा जवाब होगा, बच्चों मैं मछली बनकर सारा दिन कभी नदी में कभी समुद्र में इधर उधर तैरती रहूंगी। मुझे पानी बहुत पसंद है। यह पानी चाहे नदी का हो या समुद्र का हो या सागर का हो या फिर बारिश का हो, मुझे पानी में भीगना, बारिश में नहाना बहुत पसंद है। और मछली तो हमेशा पानी में रहती है, तो इसलिए मेरा मन तो बस यही करता है कि मछली बन जाऊं और इधर उधर तैरूं। पता है बच्चों, एक बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि मेरा मन करता है मैं हाथी बन जाऊं। हाथी क्यों? हाथी तो इतना मोटा होता है। तो क्या दीपक हाथी बनना चाहेंगे? पर दीपक ने ये बताया कि वे हाथी क्यों बनना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यह बताया कि मैं मछली क्यों बनना चाहती हूँ। तो पता है बच्चों, दीपक ने क्या बताया कि वे हाथी क्यों बनना चाहते हैं? दरअसल दीपक को गन्ने खाना बहुत पसंद है। वे जब तब खेतों में जाते हैं और गन्ना तोड़ते हैं और चूसते हैं। गन्ना खाने का तो आनंद ही कुछ और है। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं हाथी बन जाऊंगा तो मैं दिन भर बस गन्ना खाऊंगा। अब कोई भला दीपक से कहे कि भाई दीपक, अगर आप हाथी न भी बने तो भी आप दीपक बनकर गन्ना खा सकते हैं, किसने मना किया है? है ना भाई, सही बात है ना? तो दीपक का मन करता है कि वे हाथी बनकर गन्ना खाएंगे। मेरी एक दोस्त है, पता है, और यह दोस्त कक्षा 3 में पढ़ती है। अब आप कहेंगे, उषा दीदी आप तो इतनी बड़ी है और आपकी दोस्त क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची है। तो मैं कहूंगी हाँ, सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं, कक्षा 3 में, कक्षा 2 में और किसी भी कक्षा में पढ़ते हो और किसी कक्षा में न भी पढ़ते हो तो भी सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। तो मेरी एक छुटकी सी दोस्त है सलोनी। सलोनी का मन करता है कि वे तितली बन जाएं। तितली बनकर वे फूलों पर मंडराना चाहती हैं। उन्हें रंग बहुत पसंद है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, फूल भी रंग बिरंगे होते हैं। तो बस सलोनी ये चाहती है कि वे तितली बन जाएं और दिन भर फूलों पर मंडराती रहें। फूल किसी भी रंग का हो, किसी भी आकार का हो, कैसा भी हो, बस सलोनी को तो फूलों पर मंडराना बहुत पसंद है। मेरा एक और छोटा सा दोस्त है, उसका नाम है गर्वित। गर्वित का मन करता है कि मैं दादा बन जाऊं। तो मैंने गर्वित से पूछा, गर्वित आप दादा क्यों बनना चाहते हैं? तो पता है गर्वित ने क्या कहा? गर्वित ने कहा, उषा दीदी मैं दादा इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं छड़ी लेकर सब पे धौंस जमाऊं और फिर अपने छोटे छोटे पोते पोती बच्चों को मैं ढेर सारी आइसक्रीम दिलवाऊं। तो मैंने कहा कि गर्वित आप तो यह काम दादा के बिना दादा बने भी कर सकते हैं। तो गर्वित ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक मैं दादा नहीं बनूंगा मेरे पास छड़ी नहीं होगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे और अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं बच्चों को आइसक्रीम कैसे खिलाऊंगा। तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं दादा बनकर छड़ी लेकर घूमने जाऊं और सब बच्चों को, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं ढेर सारी आइसक्रीम खिलाऊं। लेकिन मुझे मालूम है गर्वित की शैतानी और गर्वित की चालाकी। दरअसल बच्चों, गर्वित को भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और गर्वित बच्चों के बहाने खुद भी आइसक्रीम खाया करेंगे। नाम किसका लगेगा? बच्चों का। और आइसक्रीम कौन खाएगा? गर्वित दादा। तो गर्वित ने सोचा, क्यों ना मैं दादा बनकर सबको आइसक्रीम खिलाया करूंगा और इस बहाने मैं भी खाया करूंगा। और छोटे मोटे बच्चे सब गर्वित को बहुत प्यार करेंगे, तो सब कहेंगे दादा दादा ये आइसक्रीम चख लो ना, दादा दादा ये आइसक्रीम चख लो ना, और दादा सबकी आइसक्रीम चखते चखते सारी तरह की आइसक्रीम खा लेंगे। तो है ना मजे गर्वित के दादा बनने के। मेरे पड़ोस में एक और छोटा सा बच्चा रहता है, उसका नाम है अकरम। पता है अकरम का मन क्या करता है? अकरम का मन करता है कि वह चांद बन जाए। तो पूछा मैंने अकरम से, अकरम तुम चांद क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे ठंडक बहुत पसंद है, मुझे ऊंचाई बहुत पसंद है, मुझे आसमान में टिमटिमाते तारे देखना बहुत पसंद है, मैं यहाँ धरती पर, जमीन पर खड़े होकर आसमान में तारों को देखने की कोशिश करता हूँ तो तारे मुझे ज्यादा नजर नहीं आते, मुझे बहुत गौर से उन्हें देखना पड़ता है। तो अच्छा है कि मैं आसमान में चांद बन जाऊं और अपने नन्हे मुन्ने तारों को टिमटिमाते हुए देखूं। मेरा भी मन करता है कि खुली छत पर, खुले आसमान में रात को सोया जाए।

और फिर हम सोते सोते आसमान में चांद को और तारों को निहारते रहे और बस निहारते निहारते और उनकी गिनती गिनते गिनते हमें नींद आ जाए। कितना अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, हम सब खुली छत पर सो रहे होंगे और सब लोग तारों को गिन रहे होंगे। तो ये कुछ मेरे मन की बात थी, ये कुछ मेरे दोस्तों की बात थी, और अब आपकी बारी है अपने मन की बात कहने की। आप सब बच्चों का मन क्या करने को करता है, झटपट एक कागज पर लिखिए या तस्वीर बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। बस एक पता आप याद कर लीजिए, वही काफी है। मैं आपको इसी पते पर मिलूंगी, लेकिन कंप्यूटर के डिब्बे के अंदर नहीं, मैं आपके मेल पढ़ा करूंगी, जहां पर आप अपनी कहानियां, अपनी कविताएं, अपने अनुभव और अपने मन की बात लिखकर हमारे पास भेजेंगे। तो इस कविता में था कि मन करता है, एक बच्चे की कविता है कि उसका मन क्या क्या बनने को करता है और वे क्या क्या बनकर क्या क्या करना चाहते हैं। चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाएंगे, तो चरखी लेकर वे लाल पीली पतंग उड़ाएंगे। अब पतंग का मौसम तो कभी भी आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाएं, कोई जरूरी नहीं है कि संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाएं, पतंग तो हमारा जब मन करेगा हम तब उड़ा लेंगे। अब आप कहेंगे कि उड़ाएंगे तो तब उषा दीदी, जब बाजार में पतंग मिलेगी। तो हमारे पास तो इसका भी तोड़ है, अगर बाजार में पतंग नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम अपनी पतंग खुद बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि पतंग कैसे बनाई जाती है, बस आप झटपट जाकर कुछ सामान ले आइए, बाजार मत चले जाइएगा, घर में ही आपको सामान मिल जाएगा। तो पतंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक पतला सा कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची। कैंची का इस्तेमाल संभल कर कीजिएगा, ठीक है जनाब। तो आपने क्या क्या सामान इकट्ठा कर लिया, पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची, शाबाश। तो अब मैं बोलती जाऊंगी और आप उस काम को करते जाइएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कागज को चकोर काटना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यह चकोर क्या होता है। चकोर का माने कि जिसकी सारी तरफ, यानी कि कागज की जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, उसे हम कहते हैं चकोर। तो आपको कागज को चकोर काटना है, काट लिया, आगे बढ़े। अब क्या करना है, अब आपको झाड़ू की एक तीली को उस पर लगाना है, सीधा करके लगा दीजिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लगा दीजिए, गोंद से चिपका दीजिए, टेप से चिपका दीजिए, ताकि तीली इधर उधर न भागे। अब दूसरी तीली का क्या करेंगे, तो दूसरी तीली को भी आपको धनुष की आकृति में मोड़ना है और उस चकोर कागज के सिरे पर चिपका देना है, यानी कागज के एक सिरे पर एक कोना और कागज के दूसरे सिरे पर दूसरा कोना। तो बस आपको धनुष की आकृति बनाकर तीली को चिपकाना है। और क्या करना है, अब आप तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दीजिए। लीजिए जनाब, आपकी पतंग तैयार है। बना ली सबने पतंग? अगर कुछ बच्चे पतंग नहीं बना पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुन लीजिएगा और पतंग बनाने का तरीका सीख लीजिएगा। अब आप अपने बड़ों की सहायता से इसमें डोर लगाइए और खुले आसमान में खुली छत पर पतंग उड़ाइए। लेकिन पतंग उड़ाते समय ध्यान जरूर रखिएगा कि आप बाउंड्री वॉल के पास ना हो, कि आप बहुत ज्यादा छत के किनारे पर न जाएं। और जितनी तेज हवा चलेगी, जितना ढील देंगे आप मांझे को, आपकी पतंग आसमान में उतनी दूर उड़ती चली जाएगी। और आप चाहें तो अपनी पतंग को कई तरीके से सजा भी सकते हैं। अगर आपकी पतंग आसमान में बहुत दूर उड़ रही है,
और वहां पर आ जाता है एक कौवा या एक चील, तो क्या करेंगे? हो सकता है कि कौवा और चील आपकी पतंग को काट ले, आपकी पतंग की डोर को काट ले, और डोर को काट कर कहां ले जाएंगे? अपने बच्चों के पास। वे कहेंगे, मेरे बच्चे पतंग तो नहीं बना सकते, तो क्यों ना आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों की डोर काटें और अपने घर ले जाएं, तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वे भी पतंग उड़ाना सीख जाएंगे। तो बच्चों, ये तो हुई पतंग की बात, यानी मेरा मन करता है कि मैं पतंग बनाऊं और आसमान में उड़ाऊं, लेकिन कोयल का मन करता है कि मैं खुद पतंग बन जाऊं और आसमान में दूर तक उड़ जाऊं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि क्या आप सारे काम सबके साथ कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ काम किसी और के साथ करना चाहते हैं, तो कुछ काम आप किसी और दोस्त के साथ करना चाहते हैं। हम अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के काम करना पसंद करते हैं। क्या आप ये बता सकेंगे कि आप कौन सा काम किसके साथ करना पसंद करते हैं? तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और फिर आप अपने मन की बात कहिएगा। तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ने लिखने का काम तो करूँ तनु के साथ, और घूमने फिरने का काम करूँ अपर्णा के साथ। तो आप कहेंगे कि मेरा मन करता है कि मैं शरारतें करूँ तनु के साथ, और पढ़ाई लिखाई का काम करूं अपर्णा के साथ। यानी आपकी और हमारी दोस्त कौन है? तनु और अपर्णा। बस हमारे काम ही तो अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों की दोस्त तो एक ही निकली। आप एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए जिसमें आप एक तरफ लिखेंगे नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे मन करता है, यानी आप अपने किस दोस्त के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, झुमकी के साथ, दीपक के साथ, तनु के साथ, आलिया के साथ क्या काम करना पसंद करते हैं। और फिर आप ये देखिए कि आपके दोस्त क्या लिखते हैं। क्या आपके किसी दोस्त ने आपका नाम लिखा? और अगर लिखा तो वे आपके साथ क्या काम करना पसंद करते हैं? अपनी सूची अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके साथ आपके सभी दोस्त काम करना पसंद करते हैं। और अगर आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, तो फिर यह भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आपके उस दोस्त में क्या खास बात है, कौन से ऐसे गुण हैं, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपके बाकी सभी दोस्त उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों, कविता तो आपने सुनी और कविता का शीर्षक था मन करता है। अब आप सोचिए कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सोचने वाली बात है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? आप कहेंगे कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है क्योंकि उसे सवेरा करना है। अगर वह दौड़ नहीं लगाएगा तो सवेरा नहीं होगा, और अगर सवेरा नहीं होगा तो हम उठेंगे नहीं, और अगर हम उठेंगे नहीं तो हम ये चैनल कैसे सुनेंगे। तो कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है क्योंकि आप सब बच्चे झटपट उठ जाएं, समय से उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर खा पी कर तैयार हो जाएं और बैठ जाएं यह चैनल सुनने के लिए। आपने चिड़ियों का शोर सुना होगा, कभी सुबह तो कभी शाम को। सुबह तो अक्सर मिस कर देते होंगे, उठते जो नहीं है, सोते रहते हैं, घोड़े बेच कर सोते हैं आप सभी। लेकिन शाम को जो चिड़िया शोर करती है, ये शोर आपने जरूर सुना होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? कभी सोचा है क्यों इतनी आवाज करती हैं? चींची चूचू चींची चूचू दिन भर शोर मचाती हैं। और कौवे, बाप रे बाप, अगर उनके सामने कोई भोजन रख दे जमीन पर तो सारे कौवे काऊ काऊ काऊ करते करते वहां आ जाएंगे। अगर किसी एक कौवे को भी ये पता चल जाए
कि किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर खाने पीने की कोई चीज रखी है तो एक कौवा शोर मचाएगा, काऊ काऊ काऊ, और उसकी आवाज सुनकर सारे कौवे दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे का मतलब उड़ते चले आएंगे, ठीक है। तो ये कौवे ये जान जाते हैं कि यहाँ खाने पीने का सामान है। दौड़े चले आएंगे का मतलब उड़ते चले आएंगे, ठीक है। तो ये कौवे ये जान जाते हैं कि यहाँ खाने पीने का सामान है। कौओं की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि वे मिलजुल कर भोजन करते हैं। लेकिन चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? आखिर चांद तारों पर क्यों अकड़ता होगा? ये कहता होगा कि देखो तुम तो हो छोटे छोटे से, एकदम पिद्दे से, छोटू से, इत्तू से, और मैं हूँ बड़ा, इसलिए मैं तुम पर अपनी अकड़ दिखा सकता हूँ। लेकिन एक दिन तारों ने आपस में बैठक की और ये कहा, ये चांद जो है अपने आप को बहुत बनता है, अकड़ता है, तो क्यों ना इस चांद की अकड़ निकाल दें। तारों ने सोचा कि चांद की अकड़ कैसे निकालेंगे, हम तो इत्तू से हैं, छोटे से हैं, पिद्दे से हैं, और चांद बहुत बड़ा है। तो तारों में एक तारा बहुत समझदार था और इस तारे का नाम क्या था? इस तारे का नाम था उषा। तो उस तारे ने कहा कि तो क्या हुआ अगर चांद बहुत बड़ा है, हम भी तो इतने सारे हैं, हम संख्या में सबसे ज्यादा हैं और चांद अकेला है, तो क्या हम सब मिलकर चांद का मुकाबला नहीं कर सकते? तो सबने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। तो फिर सबने एक तरकीब लगाई और ये सोचा कि चांद से क्या कहना है। तो पता है बच्चों, सब तारों ने मिलकर क्या सोचा कि चांद से क्या कहना है? सुबह होते ही सब तारे छुप गए और इंतजार करने लगे सही वक्त का, सही समय का। धीरे धीरे दोपहर हुई, फिर शाम हुई और फिर गहरा अंधेरा छा गया। अब आसमान में अकेला चांद और खूब सारे इत्तू से, छोटे से, नन्हे से, पिद्दे से तारे थे। सब तारों ने जोर से आवाज लगाई, ओ चांद तुम क्यों अकड़ते हो, हमें देखो, हम तो बारह महीने एक जैसे रहते हैं, लेकिन तुम तो कभी बढ़ते हो कभी घटते हो, कभी घटते हो कभी बढ़ते हो, तुम तो एक जगह टिककर बैठते भी नहीं हो। तो चांद को लगा हाँ तारों ने ये बात तो सही कही है। उसके बाद से चांद ने तारों पर अकड़ना छोड़ दिया। कितना मजा आया होगा चांद को तारों के साथ रहकर। और आप ये भी सोचिए बच्चों कि दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादा कभी कहते होंगे, बेटा मेरे पैरों में जान नहीं है, मेरे घुटनों में जान नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तुम मेरा ये काम कर दो। और अगर किसी बच्चे ने दादा का काम करने से मना कर दिया तो दादा घर में धौंस जमाएंगे और क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो दादा अगर घर में धौंस जमाते हैं वो तो झूठ मूठ का काम करते हैं, वो सच में नहीं करते, उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं। बात प्यार की आई है तो मेरे प्यार के आगे सबके प्यार एकदम फीके हैं। मैं बच्चों से जितना प्यार करती हूँ शायद ही कोई दादा दादी कर पाते हूँ। अब अगर बात प्यार की चली है तो हम एक और काम करें, प्यार से आराम से एक जगह बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चों से जब ये कहा जाता है कि आंख बंद करके बैठ जाओ तो पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक आंख बंद करेंगे और दूसरी आंख थोड़ी सी खोलकर देखने लगेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके बड़े उन पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि आंख बंद करने के लिए तो कहा है बच्चों को, बड़ों को तो आंख नहीं बंद करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सब बच्चे एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे और ध्यान से अपने आसपास की आवाजों को सुनेंगे। और आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। ये आवाज हो सकती है झींगुर की, ये आवाज हो सकती है हवा की, या फिर घुंघरुओं की,
या फिर नल से टपकते पानी की, बारिश की,

0: बिजली के कड़कने की, बादल के गरजने की, ओलों के गिरने की, पंखे की आवाज, सड़क पर जाती टमटम के हॉर्न की आवाज, या फिर घोड़ों की टाप की आवाज। और यह आवाज किसी के चलने की आवाज भी हो सकती है, या फिर मम्मी की चूड़ियों के खनकने की आवाज। तो हमारे आसपास बहुत तरह की आवाजें हैं, और हम अगर शांति से आंख बंद करके चुपचाप एक जगह बैठकर इन आवाजों को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। अब आपने आंखें बंद करने के बाद जो तरह तरह की आवाजें सुनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस किस की आवाजें हैं? आप उन सब आवाजों के नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये बहुत मुश्किल काम है। आवाज सुनकर ये बताना तो आसान है कि ये किसकी आवाज है, लेकिन ये काम मुश्किल है कि आप उस आवाज को नाम दें। जैसे चिड़ियों की चींची चूचू को, चिटर पिटर को आप कह देते हैं चहचहाना, है ना, चहचहाना। चींची चूचू भी लिख सकते हैं। कौवे की आवाज को लिख सकते हैं काव काव। बारिश की बूंदों को लिख सकते हैं टिप टिप, झमझम। तो ओलों की आवाज को कैसे लिखेंगे? ओलों की आवाज को लिख सकते हैं टप टप। अब नल से पानी टपक रहा है, उसकी भी आवाज टप टप। और टीन की छत पर जब ओले गिरते हैं तो उसकी भी आवाज टप टप। लेकिन ये दोनों तरह की टप टप की आवाज में फर्क है। एक थोड़ी हल्की टप टप है और एक थोड़ी भारी टप टप है। हल्की टप टप नल से टपकते पानी की आवाज है, और भारी टप टप टीन की छत पर गिरते हुए मोटे मोटे ओलों की आवाज है। लेकिन आवाज क्या है? टप टप। और अगर आप गलती से कुर्सी से या बेड से नीचे गिर गए तो फिर क्या आवाज आएगी? धड़ाम। ये आवाज लिखना तो मुश्किल नहीं होगा। और जब अक्सर मम्मी आपको डांट देती होंगी, जब आप गलत काम करते हैं, शरारते करते हैं, तो फिर आप रोते हैं। रोने की भी कई तरह की आवाजें हैं। जैसे कुछ बच्चे झूठ मूठ कर रोते हैं। पता है वे कैसे रोते हैं? उनकी आंखों में एक आंसू नहीं होता, लेकिन आवाज ऐसी होती है कि न जाने कितना दर्द हुआ है। और कुछ बच्चे पिन पिनाते हैं। ये जो अभी आवाज आपने सुनी रोने की, ये था पिन पिनाना। और कुछ बच्चे बम्बा फाड़ के रोते हैं, भाई करके रोते हैं। और इतनी दूर तक आवाज आती है, न जाने किस बच्चे को किसने मार दिया। और तो और कुछ बच्चे ऐसे होते, रोते जाएंगे और जमीन पर पैर पटकते चले जाएंगे। मैंने तरह तरह के सारे बच्चे देखे हैं। ये सारे ड्रामेबाज और नटंकीबाज हैं। इनके रोने के अंदाज अलग अलग हैं। तो बच्चों को देख के पता चल जाता है कि कोई बच्चा सचमुच में रो रहा है या नहीं रो रहा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डांट पड़ती है तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, सिर्फ आंसू झरते हैं। तब देख कर मुझे बहुत दुख होता है कि ये बच्चा ऐसे क्यों रो रहा है। लेकिन कई बार रोना सेहत के लिए अच्छा है। मन का गुबार निकल जाता है। हमारे मन में जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, तो रोने से वह मन का पूरा गुबार निकल जाता है और हम खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। इसलिए जब मन आए रो लीजिए। किसी के सामने रोना हो तो रो लीजिए, कहीं छुपकर रोना हो तो रो लीजिए। और सबसे अच्छी जगह होती है रोने के लिए मम्मी की गोद, या फिर दादी की गोद, या पापा की गोद, या दादा की गोद। बस आप इनकी गोद में जाइए और मुंह छुपाकर ढेर सारा जी भर के रो लीजिए। जब आप रो रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मम्मी की आंखों से गिरते आंसू आपके गाल पर गिर रहे हैं। तो हम में से कोई भी बड़ा छोटे बच्चों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। तो जितनी तकलीफ आपको होती है, उतनी ही तकलीफ बड़ों को भी होती है। तो हम अपनी बात रोने पे तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। खुशी से हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया था, तो खुशी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो खुशी की बात ये है कि आप घर में किसी का भी स्वांग रख सकते हैं। स्वांग भरना जानते हैं? स्वांग भरने का मतलब है किसी की भी वेशभूषा धारण करना और उसके जैसा अभिनय करना, जैसे नकली मूछ लगाकर पापा बनने की एक्टिंग करना, तो मम्मी का दुपट्टा या साड़ी ओढ़कर मम्मी या दादी बनने की एक्टिंग करना या अभिनय करना। आप तरह तरह की वेशभूषा पहनकर अपने बड़ों के सामने जाइए और उनसे पूछे कि बताइए मैं कौन। तो बस यही करना होगा आपको, अभिनय कीजिए और आपका जो मन करता है आप अपने मन के काम कर लीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि कभी किसी को हम परेशान न करें। तो मेरा तो मन नहीं करता कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन समय हो चला है, तो हम आज के लिए यही बात समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में मैं आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ूंगी, क्योंकि मेरा मन करता है बच्चों से बात करने के लिए। तब तक के लिए सब बच्चों को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: बुद्धि ज्ञान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
2: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
2: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वॉज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्क प्लेस को हैंडल करे।
1: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है, क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहां हम अपनी बात रख पाए, कह पाए। तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकलकर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
2: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हमने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
1: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
2: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
1: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूँ कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफर हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं। तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं?
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस्त को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहाँ तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें आईसीसी में एक है गाइडलाइंस में कि देर इज अ वे टू फॉर अ कंसिलिएशन ऑल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें यह होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे, तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी?
1: हाँ, ऐसा भी होता है, पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं आईसीसी में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं।
0: जी,
1: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत, तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सोलिसिटर्स, कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती है और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहाँ जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर दे रहे हैं, या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो ठीक ना उनको लगे, उनको अनकम्फर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो, या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब्ड हो गई हैं, या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करे, तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
0: मैम एक बात बताइए, मैं इसे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: नहीं नहीं, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को, इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। कुछ चीजें होती है, हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है।
0: मैम ये तो आपने
1: तो
0: बहुत,
1: हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते हैं,
0: जबकि बहुत गलत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज, आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूं कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राब्ता है, राब्ता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेंट को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
2: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि

0: मेल्स डोंट हैव एनी राइट. आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेन कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ्स के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है. पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल. सो इट गोज एज अ
1: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है.
0: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन.
1: यस,
0: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं रेस्ट
1: पनिशमेंट कर सकते हैं. वेरी गुड. इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी आईसीसी में ही आते हैं?
0: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब आईसीसी के.
1: मैम आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं. लेकिन खैर ये आपको आना चाहिए कि कला है कि आप कब कहां कैसे बात कर रहे हैं. अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे. और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे. तो मैम आपके पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
0: अपने आप से
1: चलिए मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो. सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है. वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं

0: यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है, हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहाँ हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाय चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारे पास पहुंच जाती है, या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता है।
0: ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी,
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेन ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल।
0: ओके।
1: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज।
0: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है?
1: वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज। हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 20 दिन, 15 से 20 दिन में आ जाएं।
0: Okay.
1: थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए।
0: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये एक प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
1: ICC के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी ICC की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती। हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या UGC में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है। कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता, इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से। तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल।
0: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
1: ICC पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी ICC प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो ICC की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं।
0: ठीक है,
1: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है। और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है ICC का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5।
0: ग्रेट। फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए। एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हो, यहाँ तक लोग ना पहुंचे? हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स, नो डाउट कि आपको पहुंचने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान, रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी। ये मेरा मानना, सोचना, तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज जाता है?
1: Actually, there should be zero tolerance for sexual harassment. It is the shared responsibility of all. अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं. अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाए वो बहुत जरूरी है. आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है. अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है.
0: जी जी,
1: सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं. तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना, तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे. और जब एक चीज ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता. मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म.
0: वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप. और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा, गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है. मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है. जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है ये

0: दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ICC से डॉक्टर एकता चौधरी. ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं. वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11. अपना ख्याल रखिएगा. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM. टाटा बाय बाय. नमस्कार. थैंक यू.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ

हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हे गाइस, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: Music, Desi Trap, Singer, Lyricist, Composer, Simran Kaur Dudley. Title, Dilbar Jani. Let's listen to it. Only on Suno Sharda 90.8 FM.
2: Hot

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: प्ले, क्या बात है।

कंगना कंगना शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सिस्टम और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फीलिंग्स।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ऐरी सुशीला तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो याए शहद दे दे।
1: हाँ तू दो मिनट बैठ, में लेके आई।
2: भाई पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने के होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुए हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुरू शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
4: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी हैं इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: इतना बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि

0: जहाँ से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहाँ नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: इस तरह सुपर हीरो
1: जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
2: बहुत मजा आएगा।
3: हाय तारा।
2: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
4: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
2: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
5: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
4: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नल या पाइप में केवल एक लिक्विड से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
4: अरे बाबा रे,
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
4: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन, अब हम खेलें।
1: ओके। तारा, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: जरूरी।
1: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
0: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
0: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है।

0: और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।